1948 जून 2026 इस समय सुबह के 5 बजकर 59 मिनट होने ही वाले हैं। आरंभ होती है अब हमारी प्रातः

मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध।

ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मारा।

खुद को मन में दबाए रखना वैसा ही है जैसे चिड़िया को पक्षी को पकड़कर किसी और पर जीतने की कोशिश करना। इससे हम स्वयं भी जलते हैं, इसलिए क्रोध का त्याग करें। ये था आज का चिंतन। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

yani bir başka sayfa, bir sınıfta, absolutely, çizem, çizim,

la vita che vuoi. Ti piace il vestito di sasso, hai visto la camicia blavata per rendere facile. E che mi sono a provare a compagni, chance di scarsa e tale fine farsi. सुबह 7 बजे कार्यक्रम होगा भोले बिस्ते की और 7:30 पर हम हैं रही प्यार के लिए 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम और 8:30 पर चित्रलोक सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता जीवन पर और इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे रात 9:30 पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा सितारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे सिनी अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का पहला भाग रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे और 12:05 पर यादों की महफिल दिन में 1 बजे सुरीला सफर ये कार्यक्रम होगा और 2 बजे का समय त्रिवेणी कार्यक्रम का

कार्यक्रम आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत आपको सुनाई जाएगी। शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा छायाग्रहण और 5:30 पर

लेखकें अशोक व्यास, निर्देशक हैं अरविंद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक।

साथी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। सीता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहाँ दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधु जन प्रेम पहचान कर इसका सम्मान करते हैं। आप साधु जन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

Saturday

0: थे प्रमोद तालवाद्य था संगति का, लेकिन फिर ढोलक भी एक तालवाद्य के रूप में आया। तो फिल्म संगीत में तबले का जो दौर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस विषय को आगे बढ़ाते थे, तबले ने कैसे अपना रंग बदला, कैसे नूर बदला, ताकि ढोलक के साथ आगे बढ़ना था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग जो है वो शुरू में हमने तबले के जो शास्त्रीय संगीत के ताल है वो ताल कैसे इसमें भी आए हैं इसके बारे में चर्चा की। फिर उपशास्त्रीय संगीत में जो ताल है वो ताल किस तरह से आए, तो शुरुआती दौर जो है इसमें प्रमुखता तबले की थी, लेकिन फिर तबला जो है वो उसके जो सीने संगीत का जो दौर है उसमें उसमें कई सारे परिवर्तन आए। तो पहला परिवर्तन जो है तबला वाद्य का वो आया ढोलक वाद्य के संग। तो उत्तर प्रदेश का ये ढोलक वाद्य जो है वो काफ़ी लोकप्रिय वाद्य है और उसका एक अपना ढंग है, बजने का ढंग है। जैसे हम लोग तबला में सोलो बजाते हैं, स्वतंत्र वादन करते हैं, वैसे ढोलक में भी स्वतंत्र वादन किया जाता है। तो इतना सारा साहित्य उसमें भी उपलब्ध है। अभी विशेषता ये है कि तबला जो है वो बंद बोल वाला है, इसमें शाही लगी हुई है
0: जी,
1: ढोलक में शाही नहीं है, वो खुला बजता है। तो ये दोनों का जब मेल होता है

से कहा कि केरवा और दादरा ये दो ताल ऐसे हैं कि जिसमें कई सारे गीत बने हैं और वो अलग अलग पैटर्न से बने हैं, तो वो पैटर्न की वजह से वो अलग लगते हैं। तो ढोलक के संग में तबला जब बजा, पैटर्न भी बदले, ढोलक के अनुसार कुछ पैटर्न उसमें आ गए और वो पैटर्न आने की वजह से वो गीत और भी सुंदर लगने लगा और भी अच्छा कर्णप्रिय लगने लगा। तो अभी जो केरवा है वो केरवा केवल धागे नाचीना चढ़ी ये मूल ठेका जो है, ये जब ढोलक के संग में तबला बजता है तब ढोलक का अपना एक करवा बज रहा है और उसके साथ में तबले पर

0: तबले का मिला जुला फिल्मी गीतों में बजने लगा तो उसकी खूबसूरती बढ़ गई।
1: क्या बात। और मिसाल के रूप में हम कौन सा गाना सुनेंगे?
0: इसमें मिसाल के तौर पर मैं ना एक ढोलक का एक लहजा रखने वाला गीत जो है वो सुनाना चाहूँगा, दिल पुकारे आरे आरे।
1: जी जी जी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ें हैं। एस डी बर्मन साहब का कॉम्पोजिशन।

0: सचिन देव बर्मन, ढोलक और तबले की खूबसूरती इस गीत में हमें दिखेगी। रविंद्र जी, ये तो बात थी ढोलक और तबले के सहयोग की, जिससे जो नाद बना और ताल संगति हुई।
1: हाँ,
0: लेकिन इसके साथ साथ पाश्चात्य संगीत के जो तालवाद्य हैं उनका भी हमारे देश में प्रवेश हुआ, हमारे संगीत में प्रवेश हुआ। बोंगो है, बोंगो है, ड्रम सेट भी, इस तरह के वाद्य जो आए, तो इस दौर में तबले का स्थान क्या है?
1: बड़ा अच्छा स्थान रहा है तबले का इस दौर में भी, क्योंकि ऐसा है कि हमारे फिल्म संगीत में कई सारे गीत ऐसे हैं कि जिसमें तबला जो है वो मेन सिंगर, मतलब जहाँ गीत चल रहा है, गाना चल रहा है
0: जी,
1: तो उसकी संगत कर रहा है तबला
0: जी,
1: और बीच में जो इंटरलूड बजते हैं वो इंटरलूड मतलब म्यूजिक जो होता है बीच वाला दो अंतरों के बीच में
0: जी,
1: तो उसमें वेस्टर्न म्यूजिक है और वेस्टर्न के सारे परकशन उसमें बज रहे हैं
0: जी, ऐसे कई गाने।
1: हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं सुनवाना चाहूँगा
0: जी,
1: नौशाद साहब का ही एक गीत है, आज की रात मेरे दिल का सलाम ले लो, राम और श्याम फिल्म
0: जी, बहुत सुंदर रचना है और पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत का

studies

tutte le religioni.

चाहते हैं पटरानी कलिका का।

பார்க்கிறீர்கள்?

0: बचपन से उन्हें छिपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय सिराज रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल।
0: तो सुनिए आपके मेहमान 10 जून शाम 4 बजे विविध भाषा पर। अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले

आजीविका लिखा और संगीत प्रतिक्रियाएं जाने

0: एक आखी पन की साथी
1: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा
0: विविध भांति से पूछते हैं कुछ अनमोल लग रहे हैं
1: तेरा जवाब नहीं
0: है छाया जी विविध भांति से
1: सदा

at the

की एक फिल्म का मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज़ें हैं, यानी करप्टर की।

புரிதல்

Bonne chance.

जा रहे हैं। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में कमल जलाया वादी।

सुनवाने जा रहे हैं धनवान फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ें हैं। सही मिथ्यानी का लिखा हुआ गाना और संगीत है हृदय।

आपको बना रही है।

गहने जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। धन को बताइए, ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है, और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान की हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को

होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझ कर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेज।

संसाधन हैं।

संसाधन है वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ है, इनका हमें कुछ मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाए, भोजन को फेंकने से बचे। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल रुपये पैसों को ही धन न समझे, बल्कि उसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

0: जनता का निरंतर सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक सक्रिय लोक संस्थाओं के साथ लिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक सर्वोच्च के भी सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25% बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। समाचार दिल्ली
1: हो गया है। राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मोताबनी शुभारम्भ किया। इस ऐतिहासिक पहल से क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे और देश का तांबा उत्पादन 2 गुने से अधिक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में जल जीवन मिशन के कार्यो में तेजी लाने और दिसम्बर 2020 में नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। वैसे तो भारत के लिए जल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार

0: के जागरण मानने में मंत्री जी के द्वारा किया गया अधिकारियों पर तत्परता से कार्य करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है। उस पर हम लोग पालन करेंगे। हर हाल में राज्य के अंतिम व्यक्ति को शुद्ध पेयजल कैसे मिले, इसके लिए सरकार और विभाग निरंतर प्रयास कर रही है।
1: झारखंड के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं जल्द सुदृढ़ होंगी। राज्य सरकार ने 8 वर्ष से अधिक

उनकी एलोकेशन

सौ बच्चे स्कूल से आ रहे हैं मैच को लाइव देखने के लिए स्टेडियम में। तो ये एक मुहिम हम लोगों ने चालू किया है, देखते हैं फर्स्ट मैच के लिए तो अभी हुआ है, आगे भी और कोशिश करेंगे कि और मैचेस में भी छोटे स्कूल के बच्चे आए जो अपने प्लेयर्स को अपने लोकल हीरोज को देखे खेलते हुए और इंस्पायर हो कि एक दिन वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सके।

निर्माण कार्यों पर संतुष्ट।

0: से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके रहने उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देखूं कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय सिराज रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम की बाकी कहानी हम आपको सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद।

हूँ।

भी संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविल ऑर्गेनाइजेशंस। प्रतिवर्ष 10 जून को ये दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, वैश्विक एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न सभ्यताओं की विविधता के सम्मान, समान संवाद और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बातचीत के महत्व को उजागर करता है और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है और दुनिया में शांति और साझा विकास बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जो लोग अगला गाना राज रिवूट। इस फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज

कहते हैं दो लड़

0: सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझे कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना है, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून

प्रदर्श अंजन और कृष्णा की आवाजी कुमार के बोल सुनीत प्रदर्श अंजन संगीत है।

Açık bir rejim görgüsü yavrum diye. Durulmuşsa koncaydan

0: कुछ करिश्मे जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मय का ना है, जाम में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
2: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से कर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफी जबान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत ले। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन से बम्बई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में फोटो स्टूडियो चलाने में

कर काम कर लें और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूमदार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डी एन मधव साहब से कहकर मुझे फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बौखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें छाए में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता। वहाँ पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई, सब के सब नए थे, बिल्कुल रंग रूप। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थी, सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डबलेट मास्टर विठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोते या कम से कम उमा शशि। अरे जमाने कहानी किसी फिल्म के रिहर्सल चल रही, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना बताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अभी आप भी कोई बोल दीजिए बरखुदार। वाह क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े, इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर आगाकर और पंडित बेताब के खेल के स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका। तो बस दिल भयानी वर्ष से मैं शुरू हो गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीत कर कहता हूँ क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के सरेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और बेलों में, सरे दरबार खिदमत में घनिक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई कसा चमर होगा। रंग जमता हुआ देख कर मैंने नाटक को जारी रखते हुए आवाज को पुरगत बनाकर आवाज के साथ नेक परवीन में से शेर कह डाला, वो है अरे दिन हवा उस अपने शरीर दे अदा को दे, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को दे, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़ कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाई आँख उस भागिन को दिखाई दे रही थी, जहाँ उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टर की रोशनी अब काफी दे सकती थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा पछा गया और फिर वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो गौर नाटिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की।

0: तितलियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
1: दस्त तो दस्त थे, दरिया न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून माशियात और चंद्रा और कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक ने खेला और जयराज के पानी में याकूब भाई के कंजूस मक्की चूस बात के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भर भूषण मिया नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता बाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरक मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजर कर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारोबार कर रहा हूँ।
0: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
1: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस गुड्डो खुर्शीद शांता से के मुकाबले में कर चुका। सेट पर शरबत तो शराब समझ कर पीने ऐसी कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूँ तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकिचा सी गई। डायरेक्टर ने बाधा का मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साथ खड़े हैं। मैंने कहा भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो। वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खताब अता फरमा चुकी हैं भाई। तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी
2: अच्छा नहीं जूता खराब कर दिया साफ करो।
1: मेरी बेटी कहाँ?
2: नहीं भाई कौन सा रे
1: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
2: मैं बहुत याद नहीं
1: याद करो प्लीज याद करो।
2: ये लो पहचाना है कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बच्चों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
1: माफ कर दो मुझे मुझ पर रंग खाओ।
2: रॉबर्ट से तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया और तुम मेरे कदमों में।
1: मुझे सिर्फ इतना बुझा दो मेरी बेटी कहाँ?
2: मैंने पूरी स्त्री को अपनी औलाद को समझा उसे पढ़ने के बजाय भेजा और वो भी आपसे वापस आ रही है।
1: मुझे एक दोस्त से मिल ले दो प्लीज।
2: मेरी तरह तो भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र सवर कर देगा।
1: गुलशन परत हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लगाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बाप बाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहाँ तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी ने मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छह छह में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। फिजरत ने आज मुदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू 55 में एक्शन की फिल्म में ललिता बाई का नहायत ही नालायक और बहुदा किस्म का और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही आनंद ललिता बाई का है और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था

0: दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे, जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या शौक है, क्या शौक है, सौ मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की जो किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद भी बना दी। कुल 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना है भाई होशियार रहना। बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नर्क में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर सब में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए हटाइए,

काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतबल ये है कि रोज टीवी में खोल लू दरवाजा भी मैं पता हाँ पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर ले। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान

देश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आस पास से गुजरती ही जवान लड़की से छेड़खानी करता है। मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी और घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

0: करते हैं। मैंने अब्दुल रहीम सैंडों से पहलवानी, लक्ष्मी महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दों के डंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं है। खैर बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फर्नीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता या लोग मुझे मार रहे होते कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरज नहीं पहचानी जाती है।
1: लेकिन कारखाने वालों से सुनने का मतलब?
2: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक बस्ती वालों के लिए
1: ठीक है लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम तो नहीं करेंगे।
2: लेकिन दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी नहीं होती।
1: हाँ हाँ लेकिन बाहर शहर में जाकर काम कर लें।
2: तुम देश वालों को प्रदेश लेना चाहते हो बाबू? मन बाबू अपनी गली को कितना भी छोड़ कर लेना था,
1: मगर काम के लिए तो मन भी शहर छोड़ कर आ गया। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे, कहाँ था इंसाफ है?
3: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल ही नहीं पाए।
0: कश्मीर जन्नत मदीन, कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इतने खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ। मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के अहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके। शायद कोई कह दे सुजरम सुल्तान बूर, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्ग बार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी भोजपुरी और गुजराती दुनिया में काम किया।

0: बात जोर देकर कहना चाहता है और वो ये कि दुनिया की यादाश्त बहुत छोटी होती है और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष है, वो बुलंदी है जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों आज बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको

शोध आलेख और स्वर हिंदुस्तान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक सिंह।

कार्यक्रम के तहत चंद बेहतरीन के साथ आइए सफर तय करते हैं जिसमें आंखों की आजमाने की किस्मत और जवाब की बात सुनाई देती है।

mucho ya, Ismael.

न जाए ये दिल हमारा। जनक का उससे जवाब आया, यू मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में उसे गुलाब आया। पंकज विलास की आवाज में ये गजल भी आप सुन रहे थे। सलाम था नुसरत पत्रिका और इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम से

आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है और 21.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:30 बजने को है कार्यक्रम फिल्म संगीत के लिए जरा सा इंतजार।

यदि आप माननीय प्रधानमंत्री से मन की बात के लिए

से हर किसी को दीवाना कर देने वाले भारतीय पॉप गायक रैपर मीका सिंह का जन्मदिन है। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है। ये बेहद लोकप्रिय पंजाबी गायक भी हैं और बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने गाए हैं। तो आइए सुनते हैं जन्मदिन पर कार्यक्रम का पहला गाना जब वी मेट फिल्म से। माफ कीजिएगा श्रोताओं, कार्यक्रम पर

karşılarınızda bir şey soracağız. Bir şey soracağız.

different

paraît, vous savez, votre étude, vous avez le choix de quoi suivre ce genre de conseil, comment être clair, sans plus fort, il va falloir vous chanter, goal point. इस बात की चर्चा हमने पिछले थोड़ी दोस्तों के साथ है राष्ट्रीय बॉल पॉइंट

रही हूँ। और लेकिन क्या आपको पता है कि इस पेन से जुड़ी और भी कई रोचक बातें हैं जो हम आपसे आज साझा करना चाहते हैं। इसके आविष्कार की अगर हम बात करें तो वर्ष 1908 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के समय कुछ समय पहले ही इसका आविष्कार हो गया था। बॉल पॉइंट पेन अभी केवल 88 वर्ष का हुआ है। इसके बाद इस पेन को जून 1938 में जीरो नाम

हंगरी के बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ था। बॉल पॉइंट पेन को पहली बार बड़े पैमाने पर अमेरिका के रॉयल एयरफोर्स में चल रहा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 30,000 पेन और

रूप में मनाया जाता है, जी हाँ दोस्तों, आज में नेशनल हर्ब स्पाइसेस डे यानी कि राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस। जी हाँ दोस्तों, ये वही मसाले और जड़ी बूटी है जो ना सिर्फ हमारी माँ के हाथ

औरत को मसालों की भूनी सब्जी। हमारी रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि छोटा सा अस्पताल भी है। दूध लगी हल्दी वाला दूध पी लो, तुलसी की चाय खा लो, पेट में घट से थोड़ी सी अजवाइन खा लो, है ना कमाल इन जड़ी बूटियों और मसालों का, है ना दोस्तों। और ये जड़ी बूटियाँ और मसाले बिना किसी साइड इफेक्ट के हमें सर्दियों सदियों दिन पर अपने खाने में हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को बाय बाय कहें और अपने शुद्ध भारतीय मसालों को कहें। जी हाँ दोस्तों, आज शाम की चाय में थोड़ी सी इलायची और लौंग एक्स्ट्रा डालने को बातें करते हैं और भी इसके बारे में।

स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं। अगर ये ना हो तो हमारे खाने भी बेस्वाद से लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ए आर रहमान के संगीत से स्वाद में लगता है गीत हम आपको सुना रहे थे गुरु फिल्म से। ए आर रहमान की आवाज़ थी, गीत

हल्दी का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। और इसके बाद बारी आती है तुलसी की। तुलसी को, तुलसी की रानी को हम कैसे भूल सकते हैं? अगर हम मसालों या फिर जड़ी बूटियों की बात करें, हम हर भारतीय के घर के आंगन की तरह होती है ये तुलसी का पौधा। और तुलसी के पत्ते एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। रोज सुबह दो पत्ते खाने से

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मास्टर है। और हाँ, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो दालचीनी का पानी आपके लिए सबसे अच्छा वरदान बन सकते हैं। पेट की दिक्कत के लिए हमारी अजवाइन और हींग को तो हम भूल ही नहीं सकते, इनकी जोड़ी तो बिल्कुल कमाल है। हींग और थोड़ी सी अजवाइन कुछ में राहत देती है, और वही अदरक और लौंग दांत के

के सिर्फ 10 सेकंड के लिए अगर हम अपनी आंखें बंद करें, हर तरफ सिर्फ घोर अंधेरा हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, दरअसल केवल सोचने भर से। और अब देखिए उन लोगों के बारे में जिनकी पूरी जिंदगी

नेशनल आई डोनेशन प्लेट डे के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो डोनियर बनने के लिए के कारण देखे को मिटाने की चाबी आपके और सिर्फ आपके और हमारे पास है। हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें खूबसूरत सी दुनिया को देख सकती।

दृष्टिदान संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है दृष्टिदान महान हमारी जाति के बाद हितों में ही रहना है। क्यों ना हम जाते जाते किसी की अंधेरी जिंदगी को रोशन सिखाएं, किसी मासूम बच्चे को स्कूल की किताबें देखने, किसी माँ को अपने बच्चे का चेहरा देखने का सुख दे। बस जरूरत है संकल्प की।

लोग कुछ भ्रम की वजह से कदम आगे नहीं बढ़े। क्योंकि हमें एक भ्रम है, लोग भी हो आप गलतीदान कर सकते हैं। और दूसरा भ्रम उनके जहन में ये है कि चश्मा पहनने वाले या फिर शुगर बीपी के मरीज दान नहीं कर सकते अपने मुंह से, ये बिल्कुल गलत है।

प्रदान करने का संकल्प लें और अपने परिवार को भी इसके बारे में बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं। मनाने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि मरणोपरांत नेत्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक करना और संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना ताकि लोगों के जीवन में रोशनी ला सके। नेत्रदान में पूरी आंख नहीं निकाली जाती दोस्तों, केवल कॉर्निया।

하는 계기로 해서 인사 생기 반응이

Pra Mateus sabia, Mateus com o Espírito Santo. दोस्तों आज का नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अपने समाप्त होता है। डीजे उजागर अपने दोस्त दिलराज को फिर

0: सिपा से दिल्ली। बचपन से उन्हें छुपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके राय उनका घर था। जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देखूं कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेकिन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति शायद फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाजी चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमल जी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, खुशी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, रखिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा आइए लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: इसलिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अपनी नेहा अगरकर देसाई के साथ। तो इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी। टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी

ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सरकार की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातें बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती है। कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी है जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या है। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बार में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कान में कहा, सुनो मेरी तो घर पर नहीं बढ़ गई। मेरी हालत देख कर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किसने है ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलेगी और आज जुम्मा है तो चलो ना। मैंने हंस कर कहा, कौन गए? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी चोरी करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची है? जब आप ये टिप्पणियाँ देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कम रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान लें, समझ लें, हमारी भावनाएं समझ लें। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत है उनमें एक और खास बात है, वो भी आपको पहचानी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डबली ही है, अब आपको पहचानी है क्या है। गीत आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल है राजेश रोशन का संगीत।

समाचारों के साथ मैं पूनम जर्जित का पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व सैनिकों ने जी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन राष्ट्रीय हरित अधिकरण से राष्ट्रीय 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। होकर पड़ती बारातियों से भरी बस दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीत कर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा माझी ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए

से लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बधाई मिल रही है। क्षेत्रीय मंत्री एवं बालविकास देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सेवा और सुशासन का स्वर्ण काल बताया। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस कार्यकाल को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति का परिचय कहा। चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को सेवा, सुशासन और अंतरिक्ष का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान

0: से समाज के हर वर्ग के
1: देश के अंदर उत्पादन करना आत्मनिर्भर बनना है। हम सब काफी प्रयास किए यहाँ से लेके सरकार चाहता भी था और यहाँ और नए माइंड का भी है।

लाभदायक है और उसके आने के पहले सेना में सब कुछ रहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। 2014 के बाद सेना में बदलाव हुआ और खुद का आत्मविश्वास बढ़ा। और मोदी जी आने के बाद जो भी हुआ अच्छा विकास हुआ है, इक्विपमेंट्स, हेलीकॉप्टर,

0: मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान
1: दलित महिला को राहुल गांधी के कैंडिडेट बनाया और 100% से हमारा पर्याप्त बहुमत है। उसके बाद भी आपने मात्र एक त्रुटि के कारण

0: ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਕਰਤਾ ਕਰੀਏ ਗੇਡ ਵਨ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਕਾ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੇ ਕਾਰਕਰਤਾ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਸਵਾਲਿਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਲ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ।
1: राजधानी रांची में आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में सदस्य अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुख्यमंत्री दिखाते हुए आंदोलन स्थलों को बराबरी क्षेत्रों में ही रोक दिया है। मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। आकाशवाणी के समाचारों के लिए आप

यानी एनजीटी के आदेश के तहत आज से नदियों से बालू खनन और उठाव पर पूरी रोक लग गई है। यह प्रतिबंध आगामी 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में मॉनसून के दौरान नदी घाटों के पर्यावरण और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी 444

0: बागवानी शुरू किए और बागवानी मेरा इतना शानदार रहा कि ये चौथा साल है बागवानी का। अगला साल ही लगभग हम 1 लाख का आम बेच चुके थे और इस साल भी एकदम खेती जो उम्मीद से बढ़िया हुआ है, पेड़ से ही पका हुआ आम को मिल जा रहा है बहुत लोगों को।
1: हम भगवान जी जिला नरेगा तरफ से तो हमने लगाए हैं, पूरे प्रखंड का सब आकर के देख रहा है, पूरे प्रखंड में लगा रहा है। इन सब कुछ मौसम की गलती से फल नहीं आया, फिर भी मेरा हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपये।
2: अहमद ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को उचित बाजार उपलब्ध करा रहा है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में कल देर रात बारातियों से भरी एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारात सुंदर पहाड़ी क्षेत्र से लौट रही थी, हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहाँ एक स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य

मौसम विज्ञान केंद्र रांची में अगले 5 दिनों के लिए मानसून के राज्य में प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की।

संदीपा कुमारी और पुष्पा माथी ने अपनी सफलता का श्रेय कोच परिवार और राज्य सरकार के सहयोग को दिया है।

0: पर हम लोग सीखे कि इंटरनेशनल में हम लोग अपना प्रेशर झेल सके।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12

everything.

को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बनाकर कानों ने कहा, सुनो तो वहाँ जो धड़कनों का बढ़ना था कुछ जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। इसमें आज की हालत देख कर बात बदल गई। यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है जहाँ सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। इस साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में स्वामी गद्यमय उदाहरण की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों ग्रहण आवेग में डूबे प्रेमी नैनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रहते हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत है। इस दृष्टिकोण से आपकी इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश चौधरी का संगीत।

पहुंच गया जहाँ लड़की का जो हाल है अमूमन वो भी हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो दिल से हम उधर से ही मिल रहा है, लेकिन इंतजार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके जमाने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी में नहीं उठा रहा था। उसकी शादी कहीं और हो गई और नए जिंदगी के नए सफर में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा जरूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, यहाँ भी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च का एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो, जब आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद भी जब आपको सुनीला सफर की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोड़ पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखिए, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहाँ आपको दिखे वहाँ आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद अक्षी के बोल, लक्ष्मीकांत अग्रवाल का।

बच्चों ने हमारी मुलाकात बांग ली है। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते थे, साथ साथ चलते हुए उसने धीरे के प्यार से मेरे कान में लगी है, सुनो मेरी तो धड़कन नहीं बढ़ गई। मेरी हालत देख कर उसने बांग बदल दी और कहा, आने के यहाँ आई कितनी है ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बात हो बातों में उसने कहा, सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ ही सिंधाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंस के कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी कुछ होने करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते।

में जुड़ने की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है। तो मुझे सुनिए सुबह भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में जीती फिल्म हम से आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत जलवागर।

मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और सुनाया भी है तो प्यार तो होना ही था। जो आज तक धन पति के साथ जाए हैं, क्या बात है? आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अंका यादव, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाजें हैं। समीर के बोल है, अनुमति की धुन है।

कवि को संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार अन्य छोटे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मिठास झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवन खोलती हो। आज की विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं न कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके ऊपर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देखकर हमारी इबादत में मैल का भाग निकली थी। सुनिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आंग में सजना लता मंगेशकर

जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियाँ यही सुलझाई जाए आपके पास, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुनिए सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

सकते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कदर करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान की हमें भौतिक संपदा के

करें। अगला धर्म है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है। इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

पानी खाद्य पदार्थ खनिज ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए। पानी को व्यर्थ मत बहाइए।

लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने दिया है। हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना लोगों के पास की।

Amen.

करेंगे। पापा ने दिल्ली के प्रधानमंत्री जीएस बनाते और पंजाब और सुबह प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषकर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तन का भी नेतृत्व ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयास को समावेशी तथा आर्थिक रूप से विकसित भारत के उनके दृष्टिकोण से कराया थी। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर जी जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। इस साल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना और सभी पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं सीमित सीमा पर हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, चतुर्वाद पर से आगे नियंत्रण पाया और

रोक के विस्तार का है और दो फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके दो फैसले लिए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है।

फिर से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा, इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा, दो प्रोजेक्ट्स में, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।

अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा।

0: बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके घर उनका घर था, जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूँ कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय सिराज रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो ये जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे विविध भारती पर। सदा बहार मौसम में आप सुन रहे हैं विविध भारती से, इनसे आपको सुनाते हैं अपना घर इस फिल्म का गीत गीता रथ और मुकेश के परों में। प्रेम भवन के बोल है रवि का संगीत।

0: उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे। तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुना न भूलिए। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: और क्या हाल चाल है?
1: बस ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात और होती है, और जब हम

0: है बताएं, हमारी बहन ने लिख के बताया कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है ना, और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
1: बिल्कुल। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें उसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है। तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए। यानी यूँ कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी, तो शायद हमारी श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए एक पहले से पता चल जाए कि ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी

0: लेकर और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं, पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र है या आंखों में रोशनी है। आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का

0: जिसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब थोड़ा ही यही आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ। अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को

0: हमें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई तो हमें बहुत बुरा लगता है। और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत

हैं मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मान लिया है और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है। नेत्रदान महाकल्याण, बहुत सुंदर बातें उन्होंने लिखकर भेजी है।

0: सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं। और एक साथी ने देखा नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है और मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथ ही लिखा है हार को जीत के लिए दुआ मिल गई,
0: सपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई,

साथी ने भी लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: जैसे महान दान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हो और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती है। इसलिए मैं आज खास जोरदार विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर है, तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़े और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान कर सके।
1: और मुझे लगता है इनका कमेंट पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख सकते। और जब इस खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ी में जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो

प्रतीक मानते थे और चंदेली साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है। जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार।

ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं। सूती धागों से बनी सिल्की साड़ी होती है, साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी में रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो

0: धागों से रंगते हैं, उससे बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
1: कंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
0: और जैसे
1: मशीनों से बनी सस्ती मती साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ न मिलना, ऐसे कई कारण है।
0: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुनिए।
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं जी।

0: सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत करने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों में ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों के किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सबका सम्मान भोजन के माध्यम से किया गया।

लगता है, मुझे अभी भी लगता है। आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें,

से कॉल ली जाती है, किसी को सब्जी पसंद है, किसी को दाल पीली लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और सजगता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है। जिस खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है नेहा, कि पहले जब हम जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लगी। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मी

शरीफा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है, इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी उसके साथ काम भी करे उसको हाथ बटाए।

0: से वो भी दो
1: हाँ, हाँ, जो हाँ, थोड़ी थोड़ी बस थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं पिया ठीक है, तो बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदि हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनवाइए और बढ़ाइए।

0: सुनी
1: अब एक साथ ही ये भी लिखा है भाई समझिए के लिए आपकी समझ और बुझ बुझ की भी जरूरत होती है क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है क्योंकि ये एक स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है बेहद के लिए आगे अक्सर ही स्वाद

देखा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गर्मियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरी नहीं, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्यौहार पर कुछ स्पेशल बन

माँ की जरूरत है नहीं। जब हम

ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ जाए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की

0: सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपने बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम, तीन का लंबाई में कटे हुए, खसखस तीन बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक दो चम्मच कूटा हुआ, पंचफोड़न सूखी लाल मिर्च एक या दो, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को एक दो घंटे पानी में भिगो कर पेस्ट बना लें। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी पर हल्दी डालकर परवल को तब तक तले जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाए। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं और तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें। इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भूनें जब तक खसखस का पिस्तापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी की खुशबू आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और दो कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसें।
1: अभी तो परवल कितने आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी यहाँ के, आप ट्राई करूंगी ये सब्जी।
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया
1: बहुत हेल्दी हो गया ना। एक हमारे साथ में लिखा है सिंगी फ्राई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है। फिर सलती से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी सारी भाजी तैयार है, पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगुना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथ लिखा है अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत

आपको पसंद है, बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे। बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले। 5 फोरन का तड़का दे। बैगन को भून कर निकाले। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले। पानी में भीगे बड़ी डिश में डाल दे। थोड़ा पानी डालकर उसमें धीमी आंच तक पकने दे। इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियाँ जरूर बनती है। पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती। मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं।

0: करते हैं, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया?
1: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं, तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पर बचपन से ईश्वर की तरह लगता था। तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके नारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देखूँ कि जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं। और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहाँ खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहाँ से चला जाता था।
0: क्या बात है।
1: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो ये होता था कि पीछे देखो तो वहाँ पे देखते कुछ न्यायालय भी रहते थे, आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो शिवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, या उनके नाम की सड़क भी थी शिवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया। और डिफरेंट, एक आदमी अखबार में काम कर रहा है शिवाई चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है।
0: जी जी।
1: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है। एक आदमी है फिराक गोरखपुरी, जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है।
0: जी।
1: अकबर इलाहाबादी, जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध की भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं। तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था, तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था, लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पर असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है? एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा।
1: मैं टिपिकल, जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
0: वैचारिकता से कोई दूर दूर से
1: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है, वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम में है।
0: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उभरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
1: पहले तो मैंने कहानी लिखी, कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा होऊंगा, तो मैंने कहानी लिख दी परी के वरदान, 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी सरेश्वर राव सक्सेना, पराग के संपादक। मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
0: 3 पेज
1: की चिट्ठी, और हाँ उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया वो लिख जाना। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई हुई। बोला कि तो कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मेरे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला, उसमें सर्वेक्षण लिखा, एक पत्र का हाथ लिखे। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद।

0: तो वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे ये मेरा आशीष है और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। और दो तीन साल चार साल पढ़ो और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने तीन जैसी चिट्ठी लिखी। तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा क्योंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: इनकार की एक भाषा होती है वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सरस्वत जी का पत्र था।
1: क्या बात है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को कुछ किस पल्लवित होने दें, रखने दें, उसे रोक के नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसके मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया उसके इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी, तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा ये बताओ कि तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं लिखा भी नहीं चुराया है, कि मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी। आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूँ उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे जीवन
1: चलेगी।
0: तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं करते हैं और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों, तो मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने प्रस्तुत करते करते, वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं प्रताप सोमवंशी, उनका नाम है और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक है, एक जाने माने प्रखर पत्रकार है, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया और खासतौर से इनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा, जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रकाश जी, और लोग आपको यही कहते हैं। और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुख्य की तरह काम करते हैं। जहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोके गए और एक वृक्ष की।
0: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा,
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक मुझे भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही,

0: छपा मेरा वो मधुमुस्कान नाम के एक पत्रिका आती तो उसमें एक कहानी छपी। मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक। शिवा मयंक शिव प्रसाद सिंह और इलाहाबाद का अपना पता। तो वो कहानी छप गई तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी थी, उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है? तो पोस्टमैन है। मैंने कहा मैं हूँ। बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर आपको कहा? तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूँ, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मेहनतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक
0: कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। हिंदी में कोई उत्पादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं, फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगे। ये इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ, लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणाएं की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रखता हूँ। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी जी जी। तो कोई संग्रह वाली कविता इसमें याद आ रही?
0: संग्रह वाली कविता एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेख कुशल है, इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के ये जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी, सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेख कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी पोस्ट बॉक्स में। मैंने एक चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में अच्छी चिट्ठी निकली हुई, मैंने चिट्ठी खींच और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था तो मैंने बताया कि आज मैंने चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते भी जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी को कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई, उन्होंने पोस्ट बॉक्स में सेम पोस्ट बॉक्स में फिर वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी, खैर जो भी, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो ऐसी घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्टनर में रहा होगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी आप अगर सुनाएं
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़

0: होता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुट्टी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की बुखार है।
1: क्या बात है,
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, सिर्फ कुशल है। और घर में पैसे चार नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोती कितनी खाल न पूछो, अरबी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, सिर्फ कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, सिर्फ कुशल है।
1: क्या बात,
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, सिर्फ कुशल है।
1: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मर्मी कविता आपने सुनाई, इसने बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रसाद जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाए?
0: इन दिनों का वो गाना था, आओ मिल जाए हम सुकंदर सुमन की तरह,
1: सुनते हैं ये गाना।

0: से पहले बात कर रही थी कविता की, अपनी कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। एक बार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहाँ सांस ले रहा था, वहाँ कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा विशद उसी शहर के थे। तो
0: सुशील कुमार
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग में नुकसान होता है। एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काज़मी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा स्वादिष्ट लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह
1: वाह। तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूँ जो मुझे लगा, तिवाली अर्शी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी, तो हम उनकी गजलें सुन रहे थे। तो गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें भी जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस्ट बैंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी तो कोई शेर
1: तो वो पूरी गजल यूँ है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: क्या बात है, क्या बात है, गागर मुसागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी बड़े नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, इसके बारे में बताइए।
1: इसके नाटक क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया। तो वहाँ शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो कर रहे हैं, तो उसमें वो लोई का कैरेक्टर आता है

बेटी है कबीर से, वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लेते हैं। अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लेते हैं। अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, तो अगर करते थे तो कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले लॉर्ड मैकाले जो कह गया कि सफेदों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उससे शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीजें, रंगे रंगों का उपन्यास। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता

0: के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है, तो मुझे लगा कि साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उससे शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रंगे रंगों का उपन्यास। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा,
0: मैंने की लंबी कविता में लिखा 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी हुई। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी। फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश क्षेत्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्री की तरह है। उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो। इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है, वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है। तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा। और ये उनकी ब्लेसिंग थी, उनका आशीष था कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला, बैक टू बैक शो था। उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिवानी है, इरशाद कामिल है और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहा
1: पर था कि
0: वेदा गुंडा थिएटर में।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसकी बात के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद,
0: 9 भाषाओं में अब तक
1: मराठी में
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तक
1: जी,
0: और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है, तो वो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं 2-3 महीने में, वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने
1: लोई नामकरण
0: कर उनका नाम
1: जी, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुन रहा है?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
1: तुम घना सा, साथ साथ इनकी ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई का नाटक है
1: जी। क्या बात है, तो ये बात, हाँ, कितनी कनेक्ट हो रही है इस बात से।

0: साथ इनकी गजल के बाद प्रताप जी ज्यादा चाहते हैं। अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफ जई के पिता पे। मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। तो मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है, दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परिदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफ जई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी है कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई।

0: फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत की। वो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी तीन लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
1: क्या बात है ना,
0: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला। ये मलाला के लिए ये कविता, तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरी जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई हैं आपको मिलेगी, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 सिर्फ से ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें बताई।
1: क्या बात है, अगर ऑनलाइन सुनाना चाहते सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर। कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है,
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, तीन बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहाँ उनकी माँ ने जान दी थी।
1: मालिक कविता,
0: तीन दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है, तीन दिन तीन बच्चे एक माँ एक खबर।
1: बहुत ही संवेदनशील कविता है और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाएं, पान खाएं संयम हमारा।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: संगीत की सतह बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निकाली है। एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े हुए हैं तो वहाँ की बातें कीजिए हमारे
1: साथ। तो कई जगह लिखी शेर भी कहा है कि हड़पनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है, हड़पनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है, तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर है इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है। तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहाँ भी ढूंढते हैं। और मैंने शेर कहा वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में गाँव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गाँव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं हमारे अवचेतन मन में और वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हॉन्ट करता है।
0: जी
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हॉन्ट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने जगह पर रहता है जहाँ आपका,
1: क्योंकि आपको लगता है कि शेर में था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गाँव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं शहर में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया कैसे।
1: देखिए पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट करते थे।

0: के मौका नहीं, हमारे पास मौका है न हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं, वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
1: बिल्कुल
0: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
1: जी जी, तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है किसी ने मिला कि आपको
0: हमको जब समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े थे, पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
1: जी
0: हमने क्या कर उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे, तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं, हम लगाने आए हैं, हम कुछ रोने आए हैं, हम कुछ
1: लगाए हैं। जी जी,
0: तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत किया, मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती मेरे पास, चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास, तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में
0: पहली बार अखबार, देखिए मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा, तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में सिंगर हो गया। मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, सिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना, उसमें रविंद्र दालिया जी ने मुझे बुला के रखा, अकेला ही भी बाबरची हिस्ट्री सर था उनके साथ, तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी। फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा, फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: प्रताप जी, वो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है, अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाश से उसके साथ साथ तैरें, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ कर सके नया कुछ करने के लिए, तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है और क्या नए लोग भी इससे जुड़ते हैं?
0: देखिए फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं।
1: जी,
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं, तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता, वो उसको सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है, क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहाँ, तो वो ऑडियंस का काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाए। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहाँ देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आप यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी।
1: जी, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए बहुत क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: या बहुत बेहतर रचा गया है, बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ के सवाल है, लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वेराइटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के

0: रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रख रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो वो अनुभव अगर हमको, ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई है, कविता माने कविता नहीं रही। तो अगर कविता माने आपकी कविता है तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे।
1: तो प्रकार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है।
0: बहुत बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे। ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
1: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है तो उसके लिए कुछ दो लाइन
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एम्बिश करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, ठीक है। आपने प्रताप सोमवंशी जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरवी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: की सदी के जीवन से जुड़ी कुछ चीजें थी।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: तो सुना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। आकाशवाणी संकेत पुरस्कार जो एक भारतीय केंद्र है 100.5

के किसी कोने में पुराने सामान की तरह रखा था, पर उन्होंने एहसास दिलाया कि जिंदगी गमों के टूटे फूटे टुकड़ों से भी सही होती है। गम के एहसास के बाद खुशी दोगुनी हो जाती है।

आंखें खोई खोई सी रहने लगी। बिना बात होठों पर मुस्कुराहट फिरने लगी, आंखें बिना काजल कचारी लगने लगी। ये शायद किसी के आने की चाह है जिसने दिल का मौसम बदल दिया।

नसीब दिल को एहसास हुआ जैसे घर हो गया है। सारी कायनात जब खूबसूरत लगने लगे तो समझो कि

不然你该去问。Namaskar, आप सभी को सुबह का शुभकाम। शुरुआत करेंगे इस कहानी से।

की हुई आवाजों से आनंद वर्षों में श्री सुलेखा का कल्याण भी आनंद ही लिए दिन बन गई थी। इसके अतिरिक्त मंगेशकर की आवाज में शैली शैलेन्द्र ने इस चीज को लिखा है और

स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के थ्री लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है, जनरेट

मेरे मन की बात कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात मेरी दिल्ली चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे और जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा।

0: coklat, kiri, ek ek sunye, sunye sunye ek.
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपके मन की बात।

आवाज़।

Hát

शासन के केंद्र में स्थापित किया। युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, सपोर्ट उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फोसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम चलाए। बीते 12 वर्षों में वुमेन लेड एम्पावरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा से जुड़ा। आपने देखा होगा करीब करीब हर कैबिनेट मीटिंग में हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता ही होता है।

Nhưng mà nó cũng có cả thể

Thank you.

तथा एसएच बिहारी ने संगीत से समारा था ओपी मेयर ने दिल ही से है ये सुनिए फिल्म का गीत और आशा भोसले और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल हैं रोशन गांव

0: रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के

सुनहरे में तमंगेशकर के आवाज की तहत भोपाल ने इस गीत को लिखा था गुलाम मोहम्मद की कभी मुझे अपनी लता मंगेशकर की आवाज है शब्दकार है मजबूरी सुल्तानपुरी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत से प्यारे।

presente, sia avanti nella mia che

compromise in our life needs. Let's know about him.

करण की रचना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुनी। रचना को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था आदिवर्धन ने। ये रचना राग के हाथ पर आधारित

0: में आपको सुनवा रहे हैं अशोक व्यास की लिखी फिल्म एक कुंवारा, निर्देशक है अरविंद माथुर।
1: माँ बहनों ने तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाए और तुम अब तक बैठे हो मुंह लटकाए गंभीर सुखी। अच्छा है प्रयास, अरे शादी के बाद की जिंदगी का अभ्यास।
2: बंद करो बकवास, मत करो ये सुखी का उपहास।
1: अरे दोस्त, उस तरह की जिंदगी से अब क्या होना है।
2: नहीं हो रही शादी, इसी बात का रोना है।
1: अभी रोना है तो करता क्यों नहीं शादी?
2: कर लो।
1: हाँ हाँ कर ले।
2: हाँ हाँ कर लो। अच्छा करो पीछे पीछे।
1: भाईजान भाईजान, लड़कों की शादी लड़कियों से होती है।
2: अरे यही तो है संकट।
1: संकट? अरे संकट कैसा? अबे जिस नाजनी पर दिल आए, जिस हसीना को दिल चाहे, वही हरी का नाम ले और हाथ उसका थाम ले।
2: अरे ये जानता है तू अच्छी कहीं लड़कियों के सामने मैं नहीं रहता, कभी तुम हो जाता हूँ, कभी खो जाता हूँ।
1: अरे अरे ये तो खोने लगा।
2: ओ खोने वाले हो सके तो लौट के आना।
1: अरे अरे पर ये हाथ में पत्र कैसा?
2: पत्र जरा बताना।
1: अरे पत्र के बाद तुम्हारा शर्माना घबराना, जरा देखे ऐसा क्या है इसमें पताना।
2: नहीं नहीं नहीं
1: वाह वाह वाह, तो क्या खूब पैगाम है। अरे भेजने वाला सेठ दौलत राम है, शादी गुणवंती के साथ साक्षात्कार दामाद।
2: मुबारक गुणवंत जी, मुबारक,
1: बहुत बहुत बधाई। ऊपर वाले के तोहफे को स्वीकार ले, बाप बेटी दोनों को शीशे में उतार ले।
2: मजाक ना करो मजाक ना करो, इतने अहम सवाल से तुम नहीं जानते वो कितने आधुनिक है, कैसे रहते हुए। और गुणवंती भी तेज तर्रार है, सबको कहनी कहते हैं। इस मौत शौच कहनी के सामने मैं जैसे तैसे अपना शरीर तो धो लूंगा, पर समझ नहीं आता कैसे संभालूंगा। तो होते होते को उसके सामने कैसे बोलूंगा।
1: तुझको गुंगा होने से बचाना होगा,

0: più puro abbraccio, il discorso più bello di lui.
1: Sonson, कुछ देर में यहां आने वाली है मेरी सहेली
0: सहेली यानी सोनिया सोनिया और रिहर्सल नहीं समझ पाया कुछ होने लगी अब तेरे चैन की हलचल
1: ना समझ बालक बीत गया समय अब तेरे डरने का हमारा ध्येय है कन्याओं के सामने तेरी झिझक दूर करने का
0: वो कैसे महाराज
1: वो ऐसे समझ ले कि ये कमरा ही है तेरी ससुराल
0: ये कमरा मेरी ससुराल ओहो वो ही पूछो तो जाने वाला हाल
1: तो कम आईक्यू वाले सज्जन सीधे शब्दों में कहता हूँ समझाकर इंटरव्यू होगा पहले तेरा यहाँ सोनिया को गुणवंती बनाकर लगता है आ गई सोनिया हेलो सोनिया
2: हेलो
1: सोनिया अभी बात हो ही रही थी तुम्हारी वो देखो मुंह फेरे खड़े हैं मजबूर ब्रह्मचारी आओ इधर जाने मन सोनिया ये है रमन
2: रमन ओ सुना है आप लड़के से बहुत कतराते हैं
1: इनकी समस्या ये ही है कि ये घबराते हैं
2: कीजिए समस्या का खुलासा
1: एक कुंवारा शादी का प्यासा एक इंटरव्यू पर टिकी हुई है आशा लेकिन लड़कियों के सामने बन जाता है इनका तमाशा तो अब देवी हम इसकी तकलीफ दूर करेंगे तुम बनो गुणवंती और हम शेख दौलत राम का रूप धरेंगे
2: हेलो डैडी
1: हेलो ज्ञानी बेटे तो रमन जी कुछ पल के लिए तशरीफ ले जाइए और वापिस इस कमरे को अपना ससुराल मान कर आइए
0: लेकिन वो बंद करिए
1: बाहर जाकर कंघे से समझिए ससुराल पहली बार आ रहे हो अंदर आते समय उतना डरिए
0: तो मैं चला
1: जाओ भगवान करेंगे तुम्हारा भला बड़ा भोला है रमन सोनिया
2: कौन से बन जाएगी कैसी सोनिया
1: ओहो आई एम सॉरी सुनो मैं जा रहा हूँ अंदर तुम्हारी मम्मी के पास शादी का इंटरव्यू देने आएंगे कोई रमन व्यास जैसे चाहो सवाल कर लेना बात कुछ जमे तो मुझे खबर देना
3: मैं यहाँ तो कह रहा हूँ धड़कते दिल को संभाले चलो भी उनको कहूँगा अगर वो नजर उठा ले
2: आराम कुर्सी पर बैठे मैं देखती रहूंगी यही पेश किताब का देखिए क्या हाल होता है नेगलेक्टेड खड़े खड़े जनाब का
3: जी

0: ही बताइए
1: वो सच है। वो हाँ वो तो कभी कभी नारी को और कभी कभी पुरुष को।
0: अच्छा ये नारी वाला कभी कभी कब होता है?
1: जी ये सब पुरुष वाला कभी कभी नहीं होता है।
0: वेरी इंटरेस्टिंग
1: जी।
0: तो अच्छा बताइए कि शादी से पहले रोमांस के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: शादी के पहले रोमांस यानी नट की तरह रस्सी पे चढ़े डांस एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो वैसे मेरा एक दोस्त है संजय, एक्सपीरियंस है, उससे पूछ कर आपको बता दूंगा।
0: अच्छा

qui l'a mis là-dedans.

0: करता है।
1: तो मिस्टर रमन, तुम प्रिलिमिनरी एग्जाम तो पास कर चुके हो, फाइनल में सिर्फ एक सवाल है। मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है, कभी डांट दे या तुम्हारे कान खींच दे, तुमको थप्पड़ वगैरह मार दे, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे?
2: मेरे कान खींच दे, मुझे थप्पड़ मार दे, बुरा बुरा
1: तैयार हो जाओ। थप्पड़ तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, मुझे खाना ही पड़ेगा तो असली गुणवन जी का खाऊंगा।
3: समाप्त हुआ पूर्वाभ्यास, अच्छा रहा प्रयास, तुम्हारी सफलता की होने लगी है आज। थैंक यू सोनिया, फॉर रमन व्यास।
1: देखा देखा, हमारा फोन भी बोलने लगा है अपनी चुप्पी से निकल के, समझकर हमारे यार की खुशी ट्रिम ट्रिम करने लगा है मसल के।
0: अब उठाकर देखो कि क्या समाचार लाया है। जरूर रमन साहब के लिए गुरमंती का बुलावा आया है।
1: ये रमन सपना सुंदरी करवा गया, बुलावा हो गया, अब मजा आ गया। हेलो, कौन? ओहो दिनेश, कैसे हो तुम? क्या आज हमें कैसे याद किया आपने? क्या समाचार है? अरे लड़की भाभी, 50,000 का इनाम भी, लखपति की बेटी। अब मैं लड़कियां बजाने वाला नहीं हूँ, यहाँ तो खुद एक लड़की आई हुई

श्रृंगार शुरू का समय बीता दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सहिता सिर्फ

0: पिता कभी सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यह थी।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने

0: समस्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए दोस्त के साथ मिलकर काम कर

राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रही है।

परिवर्तन गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनकी दूरदर्शी

का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर

सेवा देश की सीधी ही धड़कन आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी का

Questo è un inizio.

0: कपड़े बहुत सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों से 14 जून 4:15 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

Jesus.

escape.

ที่มีเนื้อในสีที่ใต้ฝนไอที

big day.

0: पूछता हूँ, आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं का ना है, जाम जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए,

लक्ष्मी रोशनी और काफी देर थी हाथ होते ही एक सन्नाटा पछा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा।

एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है डिजिटल युग।

0: रहा जैसे तुम खाते ही भेजे थे।
1: हमें कुछ याद नहीं,
0: याद करो प्लीज, याद करो।
1: चलो जाना इसी कन्नी को, ये वही कन्नी है जिसे सबसे पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
0: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
1: रॉबर्ट से तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमी को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया, और तुम मेरे कदमों में।
0: मुझे सिर्फ इतना बुझा दो, मेरी बेटी कहाँ है?
1: मैंने पूरी हस्ती को अपनी औलाद को समझा, उसे पढ़ने लिए वलायत भेजा था, और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
0: मुझे एक दोस्त से मिल लें जो
1: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
2: गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से ही निगाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ, और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक, मैंने सबसे तलवारें लगाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिल।

करते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ खजरत में आज मुदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1935 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 1942 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 1955 में एसएम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायत ही नालायक बेहूदा किस्म का पेश, और फिर 1965 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामी ललिता बाई का, और फिर 1967 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी

0: दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारदगी भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे, जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या शौक है, क्या शौक है, सौ मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत सॉन्ग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की जो किस्मत ने प्रदूषणों के जरिए मुझे नारद ही बना दी। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना है भाई होशियार रहना। बताइए वो कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों पानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस तपाया है कि भगवान मुझे नर्क में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊँ।

तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोज टीवी में खोल लू दरवाजा भी मैं पता हूँ हो जाऊंगा राज में सजा पर। पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर ले। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आस पास से गुजरती हुई जवान लड़की से छेड़खानी करता। मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

0: पड़ताल करते हैं। मैंने अब्दुल रहीम सैंडों से पहलवानी, लक्ष्मी महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलन सीखने के शागिर्दी के डंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं आए। खैर बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फर्नीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता या लोग मुझे मार रहे होते कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
1: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
2: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक बस्ती वालों के दिल में
1: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम तो नहीं ढूंढ लेते?
2: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
1: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाकर काम कर लें
2: तो तुम देश वालों को प्रदेश में लेना चाहते हो बाबू? इंदन बाबू अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
1: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़ता हूँ।

0: कभी भूल ही नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नगरी, कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ। मैं कश्मीर पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के अहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान गुर, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी भोजपुरी और गुजराती सुनी।

0: उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में सी ए, और भी सलीस हो जाएगी। सी से बम्बई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं रसोई घर में, और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरबूजे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाए। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों

případem René Kuchlí. Přesudka ta, vidějí výpad super.

से उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने पूछा, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यास लिखी हुई चीज हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़ कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थाम लेना फिर जैसे तुमने थामा मुझे, सरकारों को प्यार करने की कोशिश होती है।

निर्माहक है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो

के मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।